असंख अमर कर जाहे जो असंख गल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़े यार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल भख खाहे असंख निंदक सर कर है भार नानक नेच कह विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावे।

चीटी ते कुंचर स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जाबुद करख करा करतारा प्रजा धरतव देह अपारा जब आ करख करत हो कब हूँ तुम मैं मृत दे तर सब हूँ जेते

का चीन तन पिव आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत पिन पिन तो तेती तुमरा लखाना जाय पसारा केहे बद सजा प्रथम।

करी हम पर जगमाता ग्रंथ करा पूर्ण शुभराता किलविक शकल देह को हरता दुष्ट दुखियन को शकरता श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वाशत फल पावे सोई दुख न तिसै व्यापत कोई अडिल सुने गुंग जो जाहे सुरस ना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट

0: You had recited this salam long time back at a ladies' mehfil. जी हाँ, ये एक्चुअली मैं हर साल ये करती हूँ, सलाम पेश करती हूँ. यू आर एक्सलेंट एंड आई ऑलवेज रिमेंबर यू वेन एवर इज प्लेड. क्या बात है गजाला, दैट इज़ सो गुड टू नो कि आप जब सलाम सुनती हैं तो आप मुझे याद करती हैं. चलो, किसी तरह का सवाब हमें भी पहुँचता है. अच्छा, अब देखते हैं कि हमारे साथ हैं कृष्ण सरोई जी. कृष्ण
1: प्रवीण जी, जॉय मुखर्जी के फादर थी शशादार मुखर्जी. ही वाज अ वेरी ग्रेट डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर ऑफ द इंडियन मूवी. ही बिलोंग्स टू हिमालय स्टूडियोज, यू नो.
0: अच्छा, सो ही आई मीन वही
1: वेरी रिच मैन प्रवीण जी.
0: हां
1: जी,
0: पर वो नहीं क्या
1: मुखर्जी गॉट मूवी, अदरवाइज ही हैज नो टैलेंट, यू नो.
0: टैलेंट तो था ही नहीं, वही तो मैं कह रही
1: हूं.
0: बिल्कुल, थैंक. इसीलिए तो वो रोने लगे कि टैलेंट तो है नहीं, मुझे फिर भी एक्टर बना रहे हैं. और समझ, वो सुनील दत्त की तरह तो लगते भी नहीं थे. न जाने किसने कह दिया. ओके, अब देखते हैं कि सोनल मोदा भी ना जाओ छोड़ के मेरा भी फेवरेट है और मंजुला विश्वकर्मा का भी फेवरेट है. अच्छा, अब जो कहा है हमें यासर ने कि देखो आपने हिंट देनी थी तो ये देते.

0: और अमीर अली राना ने आप सबको मुझे भी ब्यूटीफुल वीकेंड विश किया है, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और समिन एक और भी मैसेज आया है और उन्होंने तस्वीर भी भेजी है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट हुआ है उज्जैन में, लाइटिंग 33.2 लाख लैंप्स टू मार्क द प्राइम मिनिस्टर्स बर्थडे। समिन, श्री नरेंद्र मोदी की बर्थडे थी कल, सालगिरह, तो उन्होंने दिए जलाए हैं, कितने, 33 लाख से ज़्यादा दिए जले हैं, बहुत अच्छे। ये किसने मैसेज हमें भेजा था? जी हाँ, प्रीति गुमरा। ओके, थैंक यू सो मच इंडीड। हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक का वक्त आ गया है।
1: Nairobi, are you ready to mehfil? This 26th September, East FM brings you a night of music, glamour and non-stop fun. Get ready for the incredible rhythm and raga, live band, DJ Jaggi Virdi spinning the hottest beats and of course the East FM crew bringing the vibes.
0: ईस्ट एफएम की आपके लिए शानदार संगीत महफिल, पुराने और आज के दौर के फिल्मी गीत खूबसूरत धुनों में और लाइव म्यूजिक रिदम एंड रागा के साथ, बेमिसाल अंदाज के श्रोताओं के लिए बेहतरीन मौका अपनी पसंद के गाने सुनने का।
1: वन नाइट वन स्टेज एंडलेस एंटरटेनमेंट, टिकट्स अवेलेबल एट ticketyetu.com. 1000 शिलिंग्स अर्ली बर्ड, 2000 शिलिंग्स एट द गेट। सी यू ऑन सैटरडे 26 सितंबर at the Bow Box along General Matenge Drive. East FM's Mehfil Unplugged.
2: The spicy spot on the Kenyan Premier Asian Mix.
3: The sale at Nairobi Sports House is now on. Thousands of items, including sports equipment and clothing, from brands like Adidas, Reebok, Puma, Speedo, and Stiga. Hurry to the sale at Nairobi Sports House while stocks last. Branches in Nairobi, Mombasa, and Nyali. Purchase online for countrywide delivery from NairobiSportsHouse.com. Something for everyone in the sale at Nairobi Sports House.
4: Shape your future at UniServe Education September Fair. Meet representatives from over 100 top universities worldwide. Explore undergraduate and postgraduate opportunities, scholarships, and life abroad. Eldoret, Rupa's Mall, Tuesday, 22nd September. Mombasa, Bliss Resort, Wednesday, 23rd September. And Nairobi, JW Marriott, Saturday, 26 September from 10 a.m. Entry free. UniServe Education. Master your own destiny.
5: Your favorites from the 90s.
6: Mera dil bhi kitna pagal hai.
5: 2000s.
6: Dil duba.
5: And today, East FM, Kenya's premier Asian mix.

0: और अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर ने ब्यूटीफुल साड़ी में अपनी तस्वीर भी भेजी है, मैसेज भी भेजा था।
1: चुरा के ले गया जाम और प्यास छोड़ गया, चुरा के ले गया जाम और प्यास छोड़ गया, वो एक शख्स जो मुझको उदास छोड़ गया, जो मेरे जिस्म की चादर बना रहा बरसों, ना जाने क्यों वो मुझे बेलिबास छोड़ गया, वो साथ ले गया सारी मोहब्बतें अपनी, वो साथ ले गया सारी मोहब्बतें अपनी, जरा सदर्द मेरे दिल के पास छोड़ गया, सुझाई देता नहीं दूर तक कोई मंजर, सुझाई देता नहीं दूर तक कोई मंजर, वो एक धुंध मेरे आस पास छोड़ गया, गजल सजाऊं कतील अब उसकी बातों की, जो मुझ में अपने सुखन की मिठास छोड़ गया, चुरा के ले गया जाम और प्यास छोड़ गया, वो एक शख्स जो मुझको उदास छोड़ गया। थैंक यू परवीन जी, अमीना फ्रॉम मैनचेस्टर।
0: क्या बात है अमीना, आई एम सो ग्लैड यू रिमाइंडेड मी, ये मैसेज वो आपकी साड़ी के नीचे था तो मैंने देखा नहीं। ओके, समझे, एक गाना और फिर आपसे इजाज़त लेती हूँ।

0: कमाल है, बस एक मैसेज समिन रह गया है।
1: हेलो सलाम परवीन जी। परवीन जी वक्त तो चला है जल्दी में, किसी ने बड़ा खूब कहा है, जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, जिंदगी जाने कितने मोड़ लेती है, हर मोड़ पर नए सवाल देती है, तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, तलाशते रहते हैं हर सवाल जिंदगी भर, और जब जवाब मिल जाए तो जिंदगी सवाल बदल देती है, यानी जिंदगी सवाल खत्म नहीं करती, एक के बाद एक आते रहते हैं। लेकिन हमारी मुलाकात होगी सोम के दिन। परवीन जी अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: और हैव अ फैंटास्टिक वीकेंड अहेड ऑफ यू। सम मैं चलती हूँ आगे, नीलूफर आ रही हैं। हमारी और आपकी मुलाकात अब सोमवार को होगी इंशाल्लाह।

A very good afternoon. This is Retro to Right Now with Niloufer on East FM, Kenya's premier Asian mix. Do you feel like there's so much festivities in the air? I feel it. Of course, pura saal kuch na kuch chalta hi rehta hai. But it's like there's so much happening. There's Ganpati Bappa Moria. Aaj Juma bhi hai. Phir, you know, Navratri aegi, Diwali aegi, phir Christmas aega, aur phir saal khatam. Ye saal kahan gaya? Pata nahi chala. But anyways, so if you have Ganpati Bappa Moria at home, गणेश जी, और अगर नहीं भी है और आप जा रहे हो दर्शन के लिए, मैं भी जाने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो ज़रूर हमारे लिए भी दुआ करना. मे लॉर्ड गणेशा फिल योर होम विद पीस, लव एंड अबंडेंस दिस फेस्टिव सीजन. गणपति बप्पा मोरिया. ओके, सो आई गॉट अ वंडरफुल ट्रैक कमिंग अप, और उसके साथ साथ आज जुमा भी है. सो जुमा मुबारक. हैप्पी हैप्पी फ्राइडे.

0: vocals of Sonu Nigam and Shreya Ghoshal. It's 57 minutes past one. You're on Retro 2 right now with Niloufer. So, what advice would you give someone who is still probably looking for life's purpose, or probably still, following your footsteps, or is looking to follow your footsteps, or, is already inspired by you? It could be many things. I like what Bilal said, that my advice to someone following my footsteps would be, don't follow blindly. It may look good from the outside, but in reality, things could be complex. Engage in conversations, follow the positives, and also try and improve on those positives. Be a better version of the person you are inspired of. That is fantastic. Really commendable, Bilal. Thank you for sharing. Sonal is saying, view mistakes as proof that you are trying and moving forward rather than staying stuck. Okay, interesting. Kruti, what are you saying? Okay, I'm trying to look for your message here on WhatsApp. You're saying, stay curious. Ask questions and never stop reading or exploring new ideas. That's what I've done, and that you should be following. Nothing else when if you are following my footsteps. I've got another message. You haven't mentioned your name. You're saying build relationships. Connect with mentors, peers, and people who inspire you to share knowledge and support. And above all, be yourself. Forge your own unique path instead of trying to copy someone else's journey step for step. That is very, very interesting. I've got another message here from Amit saying that embrace failure. I have done that all my life. I treat my mistakes as normal steps on the road to improvement rather than reasons to quit. Very, very interesting. I think for me, if someone is following my footsteps, I think one thing which I have maintained throughout the course of my life, whether it's my relationship, whether it's my career, whether the way I style up, the kind of work I do, or my interaction with the world, whether it's my relatives, friends, anyone for that matter, is I've always been myself. Because being yourself, your authentic self, in a long run is not tough. Because when you put up an act, कोई एक्सेंट आप दिखाते हो या किसी और तरीके से पर्सनालिटी अपनी दिखाते हो सामने, फिर वो लॉन्ग रन में भूल जाते हैं कि क्या भाई कल कौन सी पर्सनालिटी थी, मुझे तो नहीं याद रहता. इसीलिए बेटर है कि आप खुद जैसे हो वैसे रहो. Wherever you are, whatever that you're doing, that really helps you to be your organic self, your authentic self. So yeah, if you somewhere are inspired by me, then darling, just be yourself, okay? It's exactly 2 p.m. We are getting into the next hour of the show. Jayshree is saying, I miss you when you're not on radio. Oh, I miss you too, Jayshree. And thank you for bringing that sweetest honey for me. From Makindu, you're such a sweetheart. I really, really appreciate you. You're a darling, and I'm looking forward to seeing you tomorrow, okay?
1: This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
2: Every brand has a story. The big idea, the exciting new product, the offer your customers will love, the service you've worked hard to build. And when you've got something this good, why not give it a bigger stage? Give your brand the kind of exposure that gets remembered with East FM. Whether you're launching, promoting, growing, or celebrating a new milestone, we'll help you turn your message into something people remember. Advertise with Radio Africa Group. Whether you'd like to advertise on the Star, our digital platforms including Mpasho, and even on air with East FM, call us on 0711-046-200 or email sales@radioafricagroup.co.ke. Your brand has a story. Let's give it the audience it deserves on East FM.
1: With news from Kenya, Asia, and around the world, this is East FM News, presented by Parveen Adam.
3: East FM par jume ki aalmi khabrein. Khabrein tafseel se, South Africa ke mashhoor khelon ke broadcaster ko Johannesburg ke nazdeek agwa kar liya gaya. Owen Dolowo ki laash dusre din baramad hui. South Africa mein jaraim ki lehar par tashweesh hai. Police jaanch kar rahi hai. Teen hamla aawar Dolowo ki gaadi se patni ko hataakar unhe utha le gaye. Australia mein videsh se aaye chhatron ke aur backpackers ke khilaf crackdown shuru kar diya gaya hai immigration pe rok lagane ke liye. हॉलिडे वीजे जारी नहीं किए जाएंगे ताकि इमिग्रेंट्स खेतों पे काम ना कर सकें। छात्र जो ग्रेजुएशन कर लें उन्हें अपने परिवार को ऑस्ट्रेलिया बुलवाने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। ब्रिटिश शाही खानदान में तनाव पैदा हुआ है शहजादी डायना के भाई अर्ल स्पेंसर की किताब को लेकर। किताब का नाम है स्वान सॉन्ग डायना माय सिस्टर। इस अर्ल कहते हैं 1997 में जब शहजादी डायना की मौत हुई तो शाह चार्ल्स ने उनसे साफ कह दिया कि वो शहजादी को जल्द भुला देंगे। अवाम को क्वीन पर भी गुस्सा था कि वफात के बाद आपने अफसोस का पैगाम ना दिया जब तक उन्हें मजबूर नहीं किया गया। अर्ल लिखते हैं कि चार्ल्स के दिल में उनकी बहन के लिए शदीद नफरत थी। तेहरान में स्वीडिश एम्बेसडर को 48 घंटे दिए गए हैं ईरान से निकल जाने के लिए। स्वीडन ने इल्ज़ाम लगाया था ईरान पर कि जो भी हुकूमत का विरोध करे उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। ये स्वीडन की सुरक्षा का सवाल है जहां यहूदी कारोबार रही हैं। और पाकिस्तान बार काउंसिल ने सरकार से मांग की है कि पेट्रोल की कीमतों पर लगाम लगाएं। रोजाना फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाया जा रहा है, इस पर रोक लगनी चाहिए। दरमियाने और निचले तबके के पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ये थी आज की खबरें, मैं हूं परवीना।
4: The vibe is still strong. The energy is still high. From retro magic to today's biggest hits. This is Retro to Right Now with Nilufar.
0: All right, so as Ganesh festivities is in the air and बहुत सारे celebrations चल रहे हैं। गणपति बप्पा मोरिया के तो मेरी बहुत experience हैं इंडिया से और बहुत सारी memories भी। Growing up in Mumbai, you know, we are so used to celebrating every festival जो आए हमको मनाना है और मिलकर मनाते हैं। और ये जो hatred या जो difference पैदा करते हैं politicians या ऐसे लोग तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। well, पड़ रहा है कई सेक्टर्स में, विच इज रियली सैड, बट ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया में सब मिलजुल कर ही रहते हैं, सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं और एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। सो दैट इज व्हाट आई लव अबाउट यू नो इंडिया। एंड आई एम हियर ऑल्सो, आई हैव बीन पार्ट ऑफ सो मेनी गणेश फेस्टिविटीज एवरी ईयर एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अटेंडिंग वन वेरी सून। सो बप्पा इज होम एंड हैप्पीनेस इज एवरीवेयर। गणपति बप्पा मोरिया।

0: news from Kenya, Asia, and around the world. This is East FM News. East FM
1: News. I'm Tony Ngala. GSU police recruits will benefit from a 36% entry-level pay President William Ruto has announced as he pledged further investment in officers' welfare. Speaking during a GSU pass-out parade in Embakasi, Ruto said the government will continue improving housing, training and equipment while praising the officers for their sacrifice in combating terrorism, banditry and crime.
2: Modernization must go hand in hand with the welfare and professional development. We will ensure transparent promotion, group life protection, and timely support for officers injured in the line of duty.
1: Now, Ugandan President Yoweri Museveni has revealed that a Kenyan senator alerted him that Uganda was procuring petroleum products through middlemen in Kenya, prompting him to intervene and eventually end the arrangement. Museveni said he was unaware that Uganda was sourcing petroleum through Kenyan intermediaries until the senator raised the issue with him.
3: Because you see, the thing to do is for the country to buy from the refiners. Those who are refining, why do you buy from traders? If you know there are refineries in the world, why don't you buy from them?
1: The National Assembly Education Committee is seeking public views on six proposed laws seeking to transform Kenya's education sector. Public participation forums in Kisii and Kericho counties brought together teachers, parents, students and other stakeholders to scrutinize the proposed legislation. Speaking after the exercise in Kisii, the committee chairperson Julius Meli said the views will inform Parliament's consideration of the bills before they proceed further.
4: Across the several counties that we've been to, one of the more major issues that is coming out is how to mainstream the basic education management all the way from primary, junior school and senior school.
1: More than 2,500 residents of Kaunguni Settlement Scheme in Kibwezi West constituency have received title deeds. Speaking during the title insurance exercise, Kibwezi West Member of Parliament Mwenge Mutuse said the residents have endured years of uncertainty over the ownership of land and described the issuance of the documents as a historic moment. He thanked President William Ruto for supporting the process, urging residents of Ukambani to support the president's bid for a second term.
5: Kenya imekuwa na uhuru karibu miaka 63 na watu wengi katika sehemu hii hawajakuwa na hati miliki za mashamba yao. Kwa hivyo leo ni siku ya kihistoria kwa sababu watu 2,500 wataenda nyumbani na title deed.
1: A temporary diversion will disrupt access to Nairobi's expressway in Westlands entrance from James Gishuru Junction as maintenance works close the elevated overpass. The motorist will be diverted to Lower A8 Road on Waiyaki Way from 8 p.m. Saturday, September 19th, all the way to Monday noon, 21st of September. CBD bond motorists will be barred from the elevated deck and urged to follow traffic marshal's directions. A 21-year-old woman has been found stabbed to death in her Umoja 2 apartment, prompting detectives to launch a manhunt for her boyfriend, the prime suspect in the killing. Buruburu DCIO Simon Kirui said a specialized team is pursuing the suspect. Francisca Wanjathu Ranira was discovered dead after her aunt became concerned when her calls went unanswered. Police said she suffered 8 stabbed wounds on her chest. And that's the news update on East FM. I'm Tony Ngala.
0: And that's the news from around the world on East FM. East FM, Kenya's premier Asian mix.
6: Gajanan Ki Gatha, brought to you by Mara and Kaji, your home in the wild. Special offers for holiday season. Ganpati Bappa Moria. आज की कहानी है गणेश जी और धन के देवता कुबेर की। अब कुबेर के पास तो अपार धन था, सोना चांदी महल रत्न किसी भी चीज की कमी नहीं थी। एक दिन कुबेर के मन में विचार आया, बल्कि कहें अहंकार आया कि मेरे जैसा धनवान कौन है। और अपना वैभव दिखाने के लिए उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को भोजन पर बुलाने का निश्चय किया। कुबेर जी का न्योता सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और उन्होंने कुबेर से कहा, भाई आप हमारे पुत्र गणेश को भोज करा दीजिए, उसे भोजन बहुत ही प्रिय है। कुबेर ने सोचा, क्यों नहीं, भाई गणेश तो एक छोटा बच्चा ही तो है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आगे क्या होने वाला है। गणेश जी कुबेर के महल पहुँचे और खाना शुरू किया। एक थाली, दूसरी थाली, तीसरी थाली, जितना भोजन था सारा का सारा गणेश जी खा गए। फिर भंडार घर का भी सब ग्रहण कर लिया। पूरा भोजन समाप्त, भंडार खत्म, लेकिन गणेश जी की भूख खत्म ही ना हुई। अब कुबेर घबरा गए। उन्होंने हाथ जोड़कर गणेश जी से क्षमा मांगी। तब उन्हें समझ आया, धन बहुत हो सकता है लेकिन अहंकार उससे भी बड़ा हो जाए तो धन बेकार है। इस कथा के अलग अलग संस्करणों में भोजन और गणेश की भूख के विवरण अलग अलग मिलते हैं, लेकिन मूल शिक्षा यही है कि धन के साथ विनम्रता और विवेक आवश्यक है। कुबेर की कहानी सिर्फ अमीर और गरीब की कहानी नहीं है, ये धन और अहंकार की कहानी है। धन होना गलत नहीं, सफल होना गलत नहीं, अपनी उपलब्धियों पर गर्व करना भी गलत नहीं, लेकिन जब मन कहने लगे कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, समस्या तब शुरू होती है। गणेश जी हमें याद दिलाते हैं कि समृद्धि तभी सुंदर है जब उसके साथ विनम्रता हो। इसलिए गणपति जी के सामने आज एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए कि बप्पा मुझे इतना मत देना कि मैं खुद को दूसरों से बड़ा समझने लगूं, लेकिन मुझे इतना जरूर देना कि मैं किसी जरूरतमंद के काम आ सकूं। गणेश जी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। गजानन की गाथा वॉज ब्रॉट टू यू बाय मारा एनकाजी, योर होम इन द वाइल्ड, स्पेशल ऑफर्स फॉर द हॉलिडे सीजन।
0: ईस्ट एफएम, केन्या'स प्रीमियर एशियन मिक्स।